0: ईस्ट एफएम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं

सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते।

कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रय तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो।

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो

0: FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel.
1: President William Ruto has pledged 10 million shillings to FC Leopards, directing half toward player welfare and the remainder for signing new talent. Speaking today while hosting the club at State House Nairobi, the president also promised guys at the club savings and credit cooperative.
2: Meuliza patron hapa, akaniuliza muko na sponsorship ya milioni 75 kila mwaka kutoka mahali fulani. Kwa hii mwaka, nitapanga ili tujaze iwe milioni 100.
1: DCI has announced the launch of a new multi-biometric identification system to enhance service delivery. In a statement, DCI noted that the new platform, set to be rolled out next week, will accelerate the processing of police clearance certificates. According to the agency, the initiative promises a smarter and more efficient experience for Kenyans seeking certificates of good conduct. Ugenya Member of Parliament David Ocheng has declared his bid for the Siaya governorship, emphasizing that the people and not political negotiations should determine who leads the county and the wider Nyanza region. Ocheng says leadership should be based on the will of voters rather than behind-the-scenes agreements, as he seeks to position himself for the country's top seat ahead of the 2027 general election.
3: Don't put us into negotiations. Siaya must be victorious. And as David Ocheng, I want to tell you, I will stand firm, I'll stand stable, I'll defend the people of Siaya, I'll be governor of Siaya. Come rain, come high water.
1: The Matatu Owners Association has backed the government's decision to retain fuel prices, saying it provides stability for the transport sector. Chalbert Karakacha says extending the 8% VAT on fuel is a welcome move, but urges the government to introduce more measures to boost the industry, adding that passenger fares will remain unchanged for now.
4: There are so many reforms coming which are going to help the industry to grow, which are going to help the passengers. Let them be patient a bit. There is something we are working with the government to see how we are going to help it.
5: And that's the news from around the world on East FM.
0: No one plays more of your Bollywood favorites. But East FM, Kenya's premier Asian mix.
6: Namaskar. Good morning. Manar Patel Kisumu se. एक शराबी बस में ट्रैवल करता है और उसमें उसको एक लेडीज का पर्स मिलता है, तो खोल के देखा पर्स में तो कुछ 15,000 कैश था, थोड़ा ज्वेलरी था, एक आईफोन था और एक आइडेंटिटी कार्ड था, उसके ऊपर लिखा था पल्लवी। तो उसने तुरंत अपना फोन निकाल के ईस्ट एफएम को फ़ोन किया कि मेरे को ये पर्स मिला है। तो ईस्ट एफएम के ब्रॉडकास्टर खुश हो गए और बोले कि वाह, दुनिया में ईमानदार लोग हैं। तो क्या आपको ये पर्स जिसका है उसका अनाउंसमेंट करना है? बोलता है नहीं, अनाउंसमेंट नहीं करना है, पर ये जो नाम लिखा है पल्लवी, उसको पहले तो एक दर्द भरा गाना उसके लिए रख दो, क्योंकि उसका थोड़ा दुख हल्का हो जावे, और मेरे लिए एक संगम का गाना बजा दो। थैंक यू। मनोहर पटेल किसुमु।
7: ये पल्लवी का पर्स डेफिनेटली मनर के पास। समझ, पुलिस से पता चले कि कौन सी पल्लवी है, उसको पल्लवी को हमने मनर के पीछे भगाना है। पर गुड जोक मन।
8: अरविंद जी, अगर मैंने सही सुना है तो अमीर अली जी का आज बर्थडे है, तो मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और भगवान उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी से बख्शे।
7: सामने इन बातों से पता चलता है इंसान का कि वो कितना नोबल है। मंजुला विश्वकर्मा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और फेमस डैश डैश, वो तो अभी मैंने खबर देनी है यासर। यासर को पता चल गया है मैं कौन सी खबर, 67 मिलियन ईयर्स ओल्ड क्या है, वो उन्होंने दे दी है, पर मैं फिर भी आपको बाद में दूंगी। और जो हैं

0: जी अश्विन दिल पुकारे ए अच्छा लिखा हुआ है मोड़ दूं वक्त के धारे
1: दिखना परिन जी है मजरू सुल्तानपुरी
0: अच्छा मजरू मैंने कहा कि आप कहने लगे हैं राजेंद्र कृष्ण
1: हर बार
0: वो नहीं हो सकते,
1: नहीं हो सकते।
0: जी
1: लेकिन मजरू भी उनके बराबरी में
0: लग रहा है
1: राजेंद्र कृष्ण मजरू सुल्तानपुरी शकील बदायूनी साहिर लुधियानवी ये सभी टॉप के थे परिन जी उस टाइम के
0: बिल्कुल
1: और क्या क्या क्या हमको ये बताया और क्या क्या लिखा और हम अभी भी सुनते हैं
0: कितना मैं कहती हूँ खुदा के दरबार में भी इनका कोई खास स्टेटस होगा
1: होगा है ना होगा जी
0: यस एग्जैक्टली
1: पर जी ये थी फिल्म ज्वेल थीफ
0: अच्छा ये ज्वेल थीफ देवानंद की है ना
1: देवानंद की थी हाँ। साथ में थी विजयंती माला देखो हाँ। परवीन जी देवानंद का प्लेबैक सिंगिंग मोहम्मद रफी ने किया
0: हाँ।
1: किशोर कुमार ने किया और हेमंत कुमार ने किया ऑल ऑफ देम सुटेड
0: हिम
1: हो यस
0: कहते थे ना बड़ा
1: This is surprising क्योंकि आप देखो दिलीप कुमार होएगा तो उसका मोहम्मद रफी होएगा राज कपूर होएगा तो उसका मुकेश होएगा राजेंद्र कुमार होएगा तो उसका मोहम्मद रफी ऐसा था लेकिन this actor I don't know all
0: three
1: आवाज उनको सूट होती
0: थी
1: and produced some top songs परंजी
0: of course बिल्कुल
1: और ज्वेल थीफ परिन जी हिट हुई थी
0: हाँ,
1: एस डी बर्मन का म्यूजिक था
0: हाँ,
1: और बहुत चली परिन जी
0: मिस्ट्री थी
1: दीवानंद की फिल्म में मिस्ट्री
0: होती थी
1: देखो ज्वेल थीफ उनका टाइटल ही ऐसा है
0: या बिल्कुल
1: क्या, क्या क्या होएगा
0: कमाल है बिल्कुल
1: ओके थैंक यू अश्विन
0: अच्छा अब पर्दे पर कौन है दो फरमाइशें हैं एक ने कहा है दिल की ये आरजू थी वो सलमा है और फिर मंजुला गोरसिया आई हैं कहती मेरी भी है दिल की गिरह खोल दो दोनों ने दिल ओके दोनों की फरमाइशें पूरी कर देते हैं हैप्पी बर्थडे टू अमीर अली राना हाउ नाइस ऑफ यू रसिला शाह और किसी और ने भी कहा है कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वो मैं आगे देख कर पढ़ती मंजुला विश्व
2: जी किशोर कुमार के दोनों गाने हवाओं से लिख दो और कोई लौटा दे मुझे दोनों गाने बहुत अच्छे लगे मुझे अच्छे लगते हैं मुझे और ये अभी मेहंदी हसन और सलमा आगा का वाह क्या मज़ा आ गया
0: बिल्कुल मजेदार थे फरखंदा शेख क्या कहती हैं
3: परवीन मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ मैंने ये कहना था राज बब्बर की और ये जो आप बता रही हैं एक्ट्रेस अस्सलाम वालेकुम परवीन मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ आप जो बता रहे हैं राज बब्बर और ये जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी सलमा आगा उनकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी इसका तो बहुत बड़ा काम था निकाह में और निकाह फिल्म बहुत हिट गई थी तो इसके गाने बहुत खूबसूरत थे लोगों ने तीन तीन चार चार बार ये फिल्म देखी थी निकाह परवीन एक बात है कि ये जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है बहुत ही खूबसूरत होती हैं अल्लाह
0: जी लेकिन मुझे लगता है सुरेश ओबेरॉय थे निकाह में इफ आई एम हाँ देख कर कोई बता सकता है पहली फर्म

0: और बात करते हैं अश्विन दोषी जी. अश्विन, दिल की गिरह खोल दो.
1: यस जी, ये थी फिल्म रात और दिन.
0: नरगिस
1: नरगिस हाँ, हाँ, नरगिस की प्रॉब्ली लास्ट फिल्म थी परिन जी, ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता है.
0: ओके.
1: उसमें दे एक्सपेरिमेंटेड उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी. रात को ऐसी होती है, दिन को ऐसी होती है. तो ऐसे ऐसा ऐसा ऐसी कुछ स्टोरी थी.
0: अच्छा.
1: सेम पर्सन ड्यूरिंग डे टाइम बिहेव्स डिफरेंटली, ड्यूरिंग नाइट टाइम बिहेव डिफरेंटली.
0: अच्छा, ऐसा कुछ है साइकोलॉजी में, मुझे पता नहीं.
1: या होता है,
0: होता है. ओके
1: होता है.
0: ओके.
1: तो और साथ में प्रदीप कुमार था और म्यूजिक था शंकर जय किशन का.
0: ओके.
1: लेकिन चली नहीं पड़ी जी.
0: ऑफ कोर्स आइडिया भी जरा वियर्ड सा लग रहा है.
1: इंडियन ऑडियंस डिड नॉट
0: एक्सेप्ट इट ऑफ कोर्स.
1: लेकिन नरगिस की एक्टिंग बेस्ट थी पड़ी जी.
0: नरगिस
1: ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि कभी वो पर्दे पे आएगी
0: तो बस धूम मच.
1: बस बस शी वुड ट्राई, शी वुड डू द बेस्ट.
0: यस शी कुड.
1: लेकिन लेकिन सक्सेस मूवी सक्सेसफुल नहीं हुई.
0: लेकिन
1: ये गाने सभी पॉपुलर हुए थे. लेकिन ये गाना भी बहुत मुझे पसंद है
0: जी.
1: लेकिन फिल्म नहीं चली.
0: चली. ओ व्हाट अ पिटी. मंजुला को बहुत पसंद है ये गाना. तो हमने
1: गाना सभी रात और दिन का दूसरा भी गाने वो भी
0: अच्छे हैं
1: सुनने में. बहुत अच्छे.
0: ओके. वो भी सुनाऊंगी इंशाल्लाह.
1: ओके. थैंक यू पवन जी.
0: और अब देखना है ये केना 67 मिलियन साल पुराना एक ढांचा नीलाम हो गया है डायनासोर का. जी जी. जिसका नाम टायरानोसोरस रेक्स है. टायरानोसोरस रेक्स. समझे, इसकी बोली लगाई है. बोली लगाने वाले का नाम नहीं, गुप्त रखा गया है, खुफिया है उनका नाम. लेकिन उन्होंने दिए कितनी कीमत है ये ढांचा. 37 मिलियन पाउंड की कीमत पर गया है. समिन बिका है. सोथबीज नीलाम घर है. नीलाम के इतिहास इस समिन खरीदी से इतिहास बना है क्योंकि कोई किसी डायनासोर का ढांचा इतना कीमती नहीं बिका. सबसे महंगा ये डायनासोर हो गया. कहाँ मिला था ये ढांचा? सम ये मिला था एक रांच पर 2021 में किसी की जाती रांच पर. जैसे खेत होते हैं ना, किसी का था रांच तो वहाँ मिला है. तो अब वो नीलाम कर दिया गया है. 12 फुट ऊंचा, 12 फुट के बुरा 12 मीटर 12 फुट ही था. और हमें इसकी जानकारी दी थी आपने, कहा है ये थे यासर. उन्होंने कहा है कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज ओमान में रखे, हर कदम पर कामयाबी अता करे. ये जन्मदिन मुबारक कहा है अमीर अली राना के लिए. बहुत शुक्रिया यासर. और गुड आफ्टरनून परवीन जी. फिल्म निकाह में एक्टर राज बब्बर भी थे और रितु गुप्ता ने भी बताया है कि राज बब्बर भी थे सुरेश ओबेरॉय के साथ. मिस्टर मेहता फ्रॉम एम्बू. बहुत पसंद की गई थी ये फिल्म. वाकई लोगों ने इतनी पसंद की निकाह.
2: जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मगर मैं आपका म्यूजिक बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रही हूँ और अमीर अली राणा जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे और सभी को मेरा प्रणाम. नीला शेख.
0: नीला गेट वेल सून. आप तो कभी ऐसे नहीं सुनाई देती इस तरह से आपकी आवाज़. इसका मतलब आप ठीक नहीं है. ओके नीला, आपके लिए दुआ भी रहेगी. और भूपी पटेल कहते हैं निकाह फिल्म द अदर वन वॉज दीपक प्रदाशर लेकिन राज बब्बर थे. भूपी पटेल फ्रॉम किसुमू आपने ये बताया है हमें. और यही शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. थैंक यू. एम एल विश्वकर्मा आपने भी कहा है कि राज बब्बर और दीपक पराशर सलमा आगा के मध्य मुकाबिल थे ये दोनों. थैंक यू एम एल विश्वकर्मा. और भरत गंगाराम आपने भी यही कहा है कि ये थे राज बब्बर और दीपक पराशर. रंजन विनोद ने भी करेक्ट कर दिया है और अमीर अली आई रियली अप्रिशिएट ऑल द पीपल हु हैव विश्ड मी फॉर माय बर्थडे इतने लिसनर्स ने आपको विश किया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई लाइक टू थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे एक्स्ट्रा स्पेशल एंड स्टे ब्लेस्ड आई विल डेफिनेटली नॉट फॉरगेट अमीर अली राना बहुत अच्छी बात है देखें कैसे रिश्ते बन जाते हैं अनजाने लोगों के साथ समझ जिनकी आवाज़ कुछ की तो मैं आवाज़ भी नहीं सुनी मैंने आवाज़ भी नहीं सुनी हुई तो बाकी आपके पैगामों का रिश्ता है आप करते हैं बात करते हैं और सलीम मेहर अपनी आवाज़ भेजते हैं
3: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी सलीम मेहर फ्रॉम लंदन वी कैन सेव मैनी रिलेशंस इफ यू अंडरस्टैंड अ सिंपल फैक्ट दैट पीपल आर नॉट डिफिकल्ट बट दे आर डिफरेंट Good morning, Praveenji, to you and all your lovely Bemisal listeners. Have a lovely day.
0: Thank you, Salim Meher. He said that, look, people can be different, but it's not difficult. Not difficult. They may be different. Many, many thanks. Who has said? Nalini says that your session makes our day. The songs you play bring out special emotional memories. Verses tell the story, set the mood, the tempo and the tone. Oof, exceptional. No words to express the joy brought by these songs. Waqai Nalini, kahan the ye shair? Kaash humare zamane mein ye shair zinda hote. Ye to hai. Maine Khumar Bara Bankvi ko yahan dekha hua zinda. आए थे नारोबी में रितु गुप्ता ने कहा है मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू अमीर अली राना जी हाँ वो बड़ी खुशी से घर में केक खा रहे हैं

0: और दुबई पहुंच गए हैं हमारे लिस्टनर उमर, और थोड़ी सी तबीयत आपकी दुआओं से वो भी ठीक हो जाएगी, पर काफ़ी ठीक हैं। और आपको अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे, उमर गेट वेल सून। और सर भूपिंदर अभी जो आई हैं बिंदु जयपुर से, उन्होंने कहा अमीर अली राणा के लिए हमारी खास दुआएं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और साथ ही लंदन से सलीम मेहर ने भी अमीर अली राणा साहब को विश किया है सालगिरह मुबारक हो। और आइए समझ आगे बहुत दमदार गाना।
1: Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs or a segment of a program? There are a number of ways you can make a complaint or comment.

क्या नायाब सामिन लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल पंजाबी है, रस्टिक है सीन, और जो सास है वो बहू को कहती है कि तेरा शौहर रूठा हुआ है, उसको जाके मना। जी हाँ, ये हमेशा यही होता था कि औरत ही जाके मनाए। सब मैं चलती हूँ, दो गाने आपके लिए छोड़े जाती हूँ आगे, नीलूफर इन आफ्टरनून अफेयर, मेरी और आपकी मुलाकात अब कल होगी इंशाल्लाह।

0: कि जिस दिन दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो भाई साहब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। दिल को धड़कने दो और उस धड़कन को समझो और उसके साथ कनेक्ट करो, बाकी सब जाए भाड़ में। हाँ जी, ये मेरा आज का आपके लिए मोटिवेशन है। हाउ आर यू डूइंग, दिस इज रेट्रो टू राइट नाउ विद निलोफर ऑन ईस्ट एफएम, केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स, एंड इट्स गोना बी वन फैंटास्टिक जर्नी। आई हैव सम वंडरफुल 90s, आई हैव गॉट द अर्ली 2000s, आई हैव गॉट सम पॉप नंबर्स टुडे, and so much more, some new tracks as well, so keep it East FM.
1: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: It's 1:17.
3: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।